राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जिस दियां इहे वडियाइयां कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच।

ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक वो अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस दिठै सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया करनउ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पितर पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे पाणे नूं मिठा करके मन्या तना प्राचीन ते वर्तमान समय दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरतामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चिता आवण का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रिहा इत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पदा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अंतरजामी गरीब नवाज सतगुरु जिन्हां गुरतामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे माण सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप जी दे पितर चरणा च अरदास बेनती जोदड़ी कीती जांदी है। आप जी दा हुक्म जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। आप जी दे दर करदे सेवक काका शब्द नागपाल जी जो आप जी वल्लों स्वासां दी पूंजी लै के सतगुरु इस मात लोक ते आए सन आप जी वल्लों बख्शी हुई स्वासां दी पूंजी नूं भुगतियां होया गरीब नवाज कुछ दिन पहला आप दे चरणा विच जा बराजे परिवार वल्लों दास संस्कार करन तों बाद सतगुरु गुरु घर विच हाजर हो के उन्हां निमित अलाणियां दे जाप होए ने आनंद साहिब जी दा जाप होया बेअंत संगत हादरी भरन वास्ते आई है। सच्चे पातशाह जी समूह नागपाल नागपाल परिवार वालों संगतां वालों दोवें हाथ जोड़ के बेनती है विछड़ी हुई रूह नूं सदीवी काल लई सतगुरु अपने चरणों में निवास बख्शना आवागमन के चक्करों तो बचा के रखना परिवार को भाणा मनन का बल बख्शना संगियां स्नेहा मित्रां नूं भाणा मनन का सच्चे पातशाह महाराज जी बल बख्शिश करना। शब्द नागपाल सिंह कोलों जिंदगी च विचरदिआं सतगुरु कोई जाने अणजाने विच गलती हो गई होवे खिमा बख्श देना खिमा बख्श देना बेअंत संगत अरदास विच शामिल होण वास्ते आई है। सच्चे पातशाह सरबत दी हादरी चरणा च दर प्रवान करनी
माता पिता नूं भाणा मन्नण दा सतगुरु बल बख्शिश करना, हौसला बख्शिश करना, जो उपजो सो बिण सहै परो आज क्या काल, नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। गरीब नवाज पातशाह जो जी आपदे दर ते आया, हादरी दर प्रवान करनी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

सगल समग्री तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण त्याईया जिस जठा साहब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निध्या वै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दी दार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई ते गवाही देख के अनडिट कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी पित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने तरम हेत सिह दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के पित्र दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे मान सतगुरु ने ताणियां दे तान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह आप जी दे पावन पित्र चरणा अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु आप जी की महान कृपा द्वारा संध्या दे सुंदर दीवान आप दी पित्र हजूरी च सजे सजे हुए दीवाना विच सोधा रह राज साहब की पावन गुरबाणी दे जाप आरती आरते दे कीर्तन गुरमत विचारा रबी बाणी दे कीर्तन होए आनंद साहब की बाणी दे जाप होए सतगुरु समुची बाणी पढ़दिया कई गलतियां हो जांदियां ने अनजाण बच्चे समझ के माफ करना गां लई शुद्ध बाणी पढ़न का बल बख्शिश करना सतगुरु बेअंत संगत आप दे चरण परसन लई आदर हो रही है कदम लेखे चलाने सेवावां पिटावां रस्ता अपने चरणा च दर प्रवान करनिया जगत जलंधा रख ला अपनी कृपा तार जित द्वारा उभरा तिता लेहो बार सतगुरु संसार विच सुख शांति अमन सदभावना मुहब्बत की सांझ बरकरार करके रखनी समूह टहलीए सेवादारा के सिर ते मेहर भरे हाथ रख के अपने दर घर की सेवा सतगुरु जी प्राप्त करते रहना पातशाह जी आप जी की पित्र हजूरी पंचम कड़ा प्रसाद की देख सजा के आदर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद गुरु की संगत में वरताउन की आग्ञा बख्शो सतगुरु कृपा करो पित्र हुक्म की दात बख्शिश करो जो जी आपके दारा वैसो राजी होके जावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਹਿੰਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ

दृष्ट तारा शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान पखियाता एनस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जां को देखत दृदर जावै नाम सो ध्यान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दो।

कछहु कंचन पयो शब्द गुर सर्व ने सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु।

समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा बैती जात कदे दिष्ट न तारत मिथ्या मोह बंदे नित पारच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाहां दे पातशाह गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो के जो समुची मानवता नूं अज दा पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है। ये पवित्र शब्द सूही राग विच पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन रसना तो उच्चारण होया है, जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पितर अंग 743 744 उत्ते सुभायमान है। वाहिगुरु कृपा करन अपने दसे हुए मार्ग मुताबक सानू सारिया नू जीवन ढालन की सोझी दात बख्शिश करन। सतगुरु जी का कोटान कोटान शुक्र है जिहड़े अमृत वेले की दात सानू सारिया नू बख्शिश करते ने। नाम विच रंगिया हुई रूहां अमृत वेले गुरु के पितर चरणा विच आदर भर के सवासा रूपी पूंजी नू सफला कर दिया ने। वाहिगुरू ऐसी दृष्टि नदरे रहमत सदा वास्ते बना के रखन। साड़ी प्रीत गुरु नाल बनी रहे, साड़ा ध्यान गुरु के चरणा नाल जुड़िया रहे। दिल की गहराई विचों दोवें हाथ जोड़ के आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जियो आया नू जियो आया नू जियो आया नू। सतगुरु घर परिवारों में सुख शांति सिखी सिदक भरोसा नाम की दात बख्शिश करन। साढ़े को सेवावान निभा कोई जाने अणजाने गलती हो जाए कृपा करके बख्श जरूर दियो, क्योंकि संगत रब रूह है भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक।

0: हमें समस्ती स्वरूपे
1: भंगी परमात्मा समस्ती भूते
0: कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे
1: परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोगेश्वरंग परम जोगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत
0: नमो रोग कर्ता नमो राग रूपे नमो धन धने नमो मन मने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वंग प्रणासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोच्छ पालं अच्छे दिए पे दिए नामंग कामंग
1: समस्त पराजी समस्त स्तुताम।

0: namaswang nirnathe namaswang pramathe
1: namaswanga ranje namaswanga panje
0: namaswanga kale namaswanga palle
1: namasar dese namasar upese
0: namo raj raje namo saj saj
1: namo sahe sahe namo maha mahe
0: namo geet geete namo preet preete
1: namo rog roge namo sog soge
0: namo sarv roge namo sarv poge
1: namo sarv jeetang namo sarv preetang
0: namo sarv gyanang namo param tanang
1: namo sarv mantrang namo sarv yantrang
0: namo sarv drisang namo sarv krisang
1: namo sarv range tarbhangi anange
0: namo jeev jeevang namo bij bije
1: akije apije samastang pasije
0: kripalang sarupe kukarmang pranasi
1: sarvadare kisidang nevasi
0: charpat chantva prasad anmrit karme anmrit tarme अचल राज्य अटल सच
1: अखल धर्म अलख कर्म
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
1: सर्वंग पाने सर्वंग माने
0: सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं
1: सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता
0: सर्वंग देवं सर्वंग पेवं
1: सर्वंग काले सर्वंग पाले
0: रुआल जंतु है प्रसाद आद रूप नाथ मुरत जोन पुरख पार
1: सर्वमात्र महान देव भेवा दुवार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल
1: जंतर तंत्र ब्राह्मी अवधूत रूप रसाल
0: नाम ताम न जात जाकर रूप रंग न रेख
1: आद पुर को धार मूर्वा जो राज सेख
0: देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग
1: जंतर तंत्र सा विसाव है पहले अनुराग
0: नाम काम पहीन पे कत ताम हो न जाहे
1: सर्व मान सर्व तर मान सदा मानता है
0: एक मूरत नेक दर्शन कीन रूप नेक
1: खेल खेल खेल खेल अंत को ब्रेक
0: देव पेव न जाने जबे दौर कतेब
1: रूप रंग न जात मास जानी कह देव
0: तात्मात न जात जाकर

0: रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
1: सर्व सर चयो ज्यों को गण भंजन हार
0: काल हीन कला संयुक्त काल पुरख देश
1: धर्म धाम सो भ्रम रहत भूत लख पेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम
1: गर्व गंजन दोष

0: सवारे
1: कोट तो रंग रंग से कूदो तो पौन के गौर को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप बली विद्यावशीष न जात बिचारे
1: इतने पहे तो कहाँ पे पूपत अंत को नागे ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजे टोल मृदंग नगारे
1: गुजत गुड़ गजान के सुंदर हिंस दी है आए जा रे
0: पूत पविख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पर श्री भगवान पजे बने अंत को अंत।

0: काशी वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दशमी कभ्यो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। हमरे दुष्ट सब तुम काबो, आप हाद मोए बचाओ।
1: सुखी बसे मोरो परिवार, सेवक सिख सब के तारा।
0: मोर चानिज करते करिए, सब बैरन को आज सगरिए।
1: पूर्ण होए हमारी आशा, तोड़ भजन की रहे प्यासा।
0: तुम्हें छाड़ को यवन न त्याओ, जो बचाओ सो तुम दे पाओ।
1: सेवक सिख हमारे कार्य, चुन चुन सत्रा हमारे मारे।
0: आप हाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरिए।
2: मुझो सदा हमारे बचाओ, श्री अस्तु जो करे हो रचा।
0: राख ले मोय रखन हारे, साहिब संत साहे प्यारे। काल पाए ब्रह्मा भक्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। जम काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो।
2: जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।
0: जम काल सब जगत बनायो, देव दैत्य छन उपजायो।

0: चौपाई संबल 17 सास पने जय अत सास फुन तीन के हिजय
1: आद्रव सूर्य अष्टमी रविवार तीर्थ तो द्रव ग्रंथ सुधारा
0: सुविया पाए गे जब ते तुमरे तब ते को आग तेरे नियान्यो
1: राम रहीम प्राण करान अनेक है मत एक ना मान्यो
0: सिमर शास्त्र वेद सब वैभव पेद कहे।

0: सकी गृह मंदिर बने
1: हर हर मंगल लिप सकी है सोग दुख ना व्यापे
0: जन लागे दिन सभागे अपना फिर जापे
1: अनंत।

न जान तुम्हारा अंत उचित ऊचा सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा

उपजियो सो बिनस है, परु आज कै काल नानक हर गुण गायले, शाड सगल जंजाल राणा राव न को रह, रंग न तोंग फकीर वारी आपो आपनी, कोय न बंदा तीर पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। सो कहो टल गुर सेविया, अहंस सहज सुपाए, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण